그를 응. 그를 응. 그를 응. 그를 응. 그를 응. 그를 응. 그를 एक चित्त जे कशेन ते आयो गुरु राम गुरु राम गुरु राम गुरु राम गुरु राम गुरु राम गुरु राम गुरु राम

ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर शरण संगत नहीं आए त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन धुर मस्तक लिखिया लिखास धन धन सत संगत जित हर रस पाया मिल जन नानक नाम प्रगास रागुजरी महला पंजवा काहे रे मन चित्त में उदम।

तिस पाछ बचरे शरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै मन में सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल तरिया जन नानक बल बल सद बल जाइया।

ठा कौन सिमट भयो संग्रे कैठा सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुष्ट जते उठवत उत पाता सगल मलेश करो रणगाता जे अस्त तब शरणी परे तिनके दुष्ट दुखित हवा मरे पुरख जमन पग परे त्योहार तिनके तुम संकट सब ठारे

चौपाई संबत सत्रह सहस पणिजय अर्ध सहसुन तीन कहिजय भाद्रव सुधी अष्टमी रब बारा तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रोपख्याने त्रिया चरित्रे मंत्री पुप संवादे चार सौ पांच चरित्र समापतम।

तुहे अपना जान करो ब्रत पारा तुम साहेब मैं किंग कर थारा दा जान दे हाथ उबारो अमरे सबैरियन संगारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बहुर करो कविता विधनाना किशन जथा मत चरित्र उचारो चूगो कबले हो सुधारो कब बाय दोहरा

सरगबर करा सगरी पुरी समेत चौपाई। जो ये कथा सुने अर गावै दुख पावते निकट न आवै। मिशन भगत की ए फल होई आद ब्याद शब सके न कोई। सम्मत सत्रह सहस पचावन हाड़ बदी प्रथम सुख दावन। त्व प्रसाद कर ग्रंथ सुधारा भूल परी लो लियो सुधारा दोहरा। नेत्र तुमके चरण तर सद्रव तीर तरंग श्री भगवत पूर्ण कियो।

सिद्धगोष्ठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद सिद्ध सभा कर आसन बैठे संत सभा जयकारो तिस आगे रह रास हमारी साचा अपर अपारो।

इतनी सेवा प्रवान कर लीजिए, कीर्तन कर दे आप बुला दी माफी बख्शी ने पास सतगुरु जंट सिंह जी पटियाले वाले आप जी नित्रबाणी कथा रही जोड़ने पास हो प्यार से सगन करो जी।

काफी आसा राग दे अंदर महाराज गुरु अमरदास साहब जी अठ पौड़िया वाला काफी छंद उचार रहे ने। छंद का नाम है काफी। कई बार जो असी पढ़ते हैं भी काफी का मतलब की है, काफी छंद का नाम है। जिमें भुजंग प्रयात छंद, चाचरी छंद, जाप साहिब दे विच पढ़ते हैं आपां ते

भगत कबीर साहिब जी उन्हां दी बाणी सारे भगतां दी बाणी तो ज्यादा दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच। और उन्हां नूं श्रोमणी भगत भी कहिंदे ने। श्रोमणी दा मतलब ये नहीं कि दूसरे भगतां तो श्रेष्ठ हन या दूसरे भगत उन्हां तो थले ने। श्रोमणी उसनूं कहिंदे ने जिहड़ा बहुत सारे आस्पैक्ट्स नूं बहुत सारियां गल्लां नूं बहुत सारे आशियां नूं बहुत पक्खां नूं बहुत पक्खी बाणी जिहड़ी होवे जो जीवन के हर पहलू नूं छूंदी होवे जो कर्म कांड ते भी होवे अध्यात्म ते भी होवे पखंड ते भी होवे। और कबीर साहब की बाणी च यह सारा कुछ मिलता है और बहुत गिनती च गुरु अर्जन देव महाराज ने बाणी दर्ज की है। इस करके उन्होंने श्रोमणी भगत कहते हैं। भाई गुरदास जी ने भी लिखा कि भगत वड्डा राजा जनक है। वह वड्डे का मतलब यह है कि अगो फिर आप ही जवाब देते हैं कि गुरु गुरमुख माया विच उदासी। आदमी को शक्ति होवे पावर होवे राजा होवे सेना होवे सारे लोग उसकी गल मानते हो तो आम संसारी आदमी का दिमाग जरा खराब हो ही जाता है क्योंकि हाथ पावर आवे तो बंदा कई बार बंदा रहिंदा ही नहीं। आदमी कहिंदा मेरा मित्र सी चंगा भला मेरे नाल बहिंदा खलोंदा सी चंगी भली गलबात करदा सी आना जाना सी साडा बोलना सी पर जदों दा गद्दी ते बैठा राज गद्दी नूं प्राप्त होई है मैनू पछाणना ही बंद कर गया। इस करके भाई गुरदास ने जनक नूं वड्डा किया। कोई साधु मिल गया साधु ने अपना लंगोट ते डंडा बाहर रखिया ते जनक जिहड़ा संघासन ते बैठा है कहिंदा वेखां ते सी किड्डा क वड्डा ये भगत है। ते पहरेदार ने आके दस्या कि तुहाडे राज दरबार नूं अग लग गई अग लग गई। जनक जिहड़ा अडोल संघासन ते बैठा होया तो साधु जिहड़ा आया सी जिन्हें कपड़े नहीं सी पाए जो त्यागी सी जिन्हें सारा कुछ ग्रस्त छड्डिया सी माया छड्डी सी वह भजन लगा गेट वालों दरवाजे वालों कहिंदा की गल है। जनक कहन लगा की गल है क्यों दौड़दा कहिंदा मेरा सोटा ते मेरा लंगोट जिहड़ा ना तेरे दरवाजे ते पए उहनूं अग ना लग जाए। कबीर साहब कहिंदे माया तां जे तो क्या भाया जो मान तजे आना जाए। कई बार आदमी कहिंदा मैं ना लखां करोड़ां नूं लत मार के आ गया वो लखां करोड़ां दी जिहड़ी सत्या है ताकत जिहड़ी है वह कई बार छोटियां छोटियां चीज़ां दे विच फिर प्रवृत्त हो जाती है बदल जाती है। वो लंगोट ते जिहड़ा सोटा सी ना उहदा वह जिहड़ी लखां करोड़ां दी जायदाद छड्डी सी ना वह उहदे च प्रवेश हो गया। गल ते अटैचमेंट दी सी ना तो फिर उन्हें ख्याल आया भी वाकई जनक जिहड़ा है इहदे दरबार नूं अग लगी है संघासन ते आराम दे नाल बैठा है गुरमुख माया विच उदासी इस करके वड्डा भगत है। कबीर साहब का भी तुसीं इतिहास पढ़ोगे ना गाओ दे नाल ते उहदे विच भी तुहानूं अंदरूनी चीज़ां ज़्यादा मिल गईआं। इह जो शब्द असीं पढ़िया सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा क्योंकि जोगी जिहड़े ने यह बाहर का भेख बनाउंदे ने और बाहरों ही पता लगता है जोगी जिन्हें कंच मुद्रा पाईआं होण ते शरीर नूं सुवाह मली होवे ते गोदड़ी बन्नी होवे ये सारे बाहरी रूप हैं बाहरों जोगी प्रतीत हुंदा है पर गुरु कहिंदे ने अंदरों जिहड़ा है जोगी है नहीं

श्रुति है, श्रुति और सिमरत उन चेते च रखना। तो दो मुंदा केड़िया ने, सुरत ते सिमरत जड़िया ने, ये मुंदा हन केवल मूंह दे नाल वाहिगुरु कर लेना, क्योंकि शरीर शरीर है। जो शरीर बिणस जाएगा यह मूंह भी चला जाएगा, सारे कर्मकांड भी खत्म हो जाएंगे। गल मनदी है, साधना मनदी है। कबीर साहब ने बड़ी डूंगी गल की है, एक शब्द मैं और पढ़ के फिर कीर्तन की समाप्ति करनी है। कियो शिंगार मिलन कहताई, हर ना मिले

गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह गुरु वाह

वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु

0: वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु
1: वाहेगुरु
0: वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

गुर ए नम है, सतगुर ए नम है, श्री गुरुदेव ए नम है। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पाव, काल कलेह तन माहि मिटाव। सिमरो जाल संपर एक है, नाम जपत अगंत अनेक है। वेद पुराण सिमरत सुधाखियर, किने राम नाम एक आखियर। किन का एक जिह जीव सावे, ता की महिमा गणी न आवे। ता की एक दर्श तुहारो, नानक कुन संग बोहे उदाहरो। सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहाओ। प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै, प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै। प्रभ कै सिमरन काल पर हरे, प्रभ कै सिमरन दुश्मन डरे। प्रभ सिमरत काश विघ्न न लागै, प्रभ कै सिमरन अन दिन जागै। प्रभ कै सिमरन भाव ना व्यापै, प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै। प्रभ का सिमरन साध कै संग, सर्वधान नानक हर रंग। प्रभ कै सिमरन रिद सिद्ध नौ निध, प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध। प्रभ कै सिमरन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमरन दर गै मानी। प्रभ कै सिमरन होय सो भला, प्रभ कै सिमरन सुफल फला। से सिमरह जने आप सिमराए, नानक ता कै लागो पाए। प्रभ का सिमरन सब ते ऊचा, प्रभ कै सिमरन उदरै मूचा। प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै, प्रभ कै सिमरन सब कै सुजै। प्रभ कै सिमरन नाहीं जम त्रासा, प्रभ कै सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ कै सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृद माहे समाए। प्रभ जी बस है साध की रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ का सिमरह से तनवंते, प्रभ का सिमरह से पतवंते। प्रभ का सिमरह से जन प्रवान, प्रभ का सिमरह से पुरख प्रधान। प्रभ का सिमरह से बेमोहताजे, प्रभ का सिमरह से सर्व के राजे। प्रभ का सिमरह से सुखवासी, प्रभ का सिमरह सदा विनाशी। सिमरन ते लागे जन आप दयाला, नानक जन की मंगे रुवाला। प्रभ कौ सिमरै से परपकारी, प्रभ कौ सिमरै तन सद बलिहारी। प्रभ कौ सिमरै से मुख सुहावे, प्रभ कौ सिमरै तन सुख बिहावे। प्रभ कौ सिमरै तन आत्म जीता, प्रभ कौ सिमरै तन निर्मल नीता। प्रभ कौ सिमरह तिने अंध कनेरे, प्रभ कौ सिमरह बसे हर नेरे। संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभ कै सिमरन कार्ज पूरे, प्रभ कै सिमरन कबह न झूरे। प्रभ कै सिमरन हर गुरबानी, प्रभ कै सिमरन सह समानी। प्रभ कै सिमरन नेतल आसन, प्रभ कै सिमरन कबल विगासन। प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभ सिमरन कांतु न पार। सिमरह से जन जन का प्रभ मया, नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भक्त प्रगटाए, हर सिमरन लाग भेद उपाय। हर सिमरन पह सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच हुकुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन की ओ सगल अकारा, हर सिमरन मह आवनकार। कर कृपा जैसा बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तन पाया सरोक। दीन दर दुख भंजना, घड़ घड़ नाथ अनाथ। सरन तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुतमीत न पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई। जह मां प्याण दूत जम दलै, तह केवल नाम संग तेरे चलै। जह मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहि उधारी। अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाव पर हरे। गुरमुख नाम जप मन मेरे, नानक पाव सुख कनेरे। सगल सृष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुए सुखिया। लाख करोरी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तरै। अनक माया रंग तेख ना बुझावे, हर का नाम जपत आगावे। जिह मार्ग एहो जाते अकेला, तह हर नाम संग होत सुहेला।
ऐसा नाम मन सदा ध्याइए नानक गुरमुख परम गत पाईऐ छूटत नहीं कोट लाख बाही नाम जपत तह पार पराहि अनक बिघन जय आय संघारे हर का नाम तत्काल उधारै।

संत दर्द दुख लथा नाम की महिमा संत रिद वसै संत प्रताप दुरत सब नसै संत का संग वडभागी पाईए संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कछ बर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन को इस रोग बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टडोल।

काठी पिहित मन हर के नाम की महिमा ऊंच नानक नाम उदरे पतद बहु मूच बहुत सियाण जम का पहु ब्यापे अनक जतन कर त्रिसन नाम धरापे भेख अनेक अगण नहीं बुझे कोट उपाव धर गय नहीं सिजय

साच छोड़ झूठ संग मचै, जो छड़ना सो अस्थिर कर माने, जो होवन सो दूर पराने, छोड़ जाए तिस का श्रम करै, संग सहाई तिस पर हरै।

मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती असव बहतरा मिथ्या रंग संग माया पेख स्तव

सदा मणि अंदर जिह प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे तिहाए सदा मणि अंदर जिह प्रसाद गृह संग सुख बसना आड़ पैर सिमरहु तिस रसना जिह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा तिहाई है ध्यावन जोग जिह प्रसाद पाड़ पटंबर हंडावै तिसे त्याग कत अवर लुभावे जिह प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जास गावी जय जिह प्रसाद सब को माने मुख ताको जस रसन बखाने

हे देह प्रसाद आरोग कंचन देही लेव लाभ हो तिस राम स्नेही देह प्रसाद राउला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत देह प्रसाद रे सग

सोए। आप जपाए जपाए सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभु कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए, प्रभु दया ते मात उत्तम होए।

नाही महान। ब्रह्म ज्ञानी उचते उचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सगल के जी नाम तुम ब्रह्म ज्ञानी चीना

ब्रह्म ज्ञानी, आम निरंकार ब्रह्म ज्ञानी, की शोभा ब्रह्म ज्ञानी, बणी नानक ब्रह्म ज्ञानी, सर्व का तनि सलोक उर तार है, जो अंतरनाम सर्व में पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर, नमस्कार नानक अपरस सगल निस्तारे अष्टपदी मिथ्या नाही रसना।

कई गुड़ बजो नहीं फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनमंत कई कोट माया में चिंत, जह जय पाणा तह तह राखे नान सब किस प्रभ कह हाथे, कई कोट पै बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी।

समात ताका अंत न जाने को आपे आवनान क्रभ सोय कई कोड़ पार ब्रह्म के दास तेन होते आत्म प्रगास

थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगे में रह जाए, संत का दुखी सदा सहकाय, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई, संत के दुखी की पूजे नासा, संत का दुखी उठ चले नासा, संत के दुख न त्रिष्टै कोय, जैसा भावे तैसा कोई होय, पया कीर्तन मेटै कोय, नानक जाने सच्चा सोए, सब कट दिस के ओह करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तद करो दिन रात, तिसे ते आवो सास गिरास, सब कछ वरते।

ंगुदरे सुन श्रवन कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए है रूप सत जाका साते स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जा

स्वामी अपनी कृपा जो साफ करे। नानक सो सेवक गुर की मातले बीस बिस्वे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गात जाने सो सात गुर जिस हृदय हर नाव अनक बार गुर को बल जाव सर्वदान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आव नहीं कर परम सहस सयानप लया ना जाइए नानक ऐसा गुर बड़भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पनीत परसद चरण गत निर्मल रीत पे

उपदेश पाव चुका निरपा हुए बसे सगल ब्याद मन ते खैन से जिसका साधन कृपाता हरि साध संग जब नाम रारी जत पाई चुके ब्रह्म गमन सुन नानक हर हर जस रमन निर्गुण आव सरगुण पियो ही कला तार जिन सगली मोही अपने चित प्रभ्या।

सदा सुख पाओ। पहो बिन से पूर्ण होया सह भगत पाए, आत्म प्रगास तित कर जाए, बसे बनासी कहना काटी जम फासी, तत बीचार कह जन साचा, जन मरे सो काचो काचा, वा गवन मिटै प्रभ सेवा पतिया, शरण गुरुदेव।

आनंद मुक्त कहो किस गौ गणी। जावे के हरंग में अपार तब नरक स्वर्ग कह कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभु सह सुभा तब शिव सकत कह कित ठाय।

अभिमान देह स्वरूप केवल जगदीश तह छल छिद्र लगत कौ कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे तह किसे भूख कवन तृप्तावे करन क्रामन करने हार नान करते कना है सुमार जब अपनी शोभा अपने संग मराज तब कवन भाई भाव मित्र सद भाई जय

हैदार उत्तम सलोक साध के भजन अमलीक लाल एह रतन संत कुमावत होत उदार आप तरह लोके ने तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा रंग दे दे शब्द अनाह दुआ दे सोन सोन अनद करे प्रभु गा दे।

होई सेव की सेव आल जनार बकात रहते राम नाम सम रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभि खेव हमारी प्रभु की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्रचित सुखमनी सहज

फिर देहे। गाव को जाप दिशा दूर, गाव को विखे हादरा दूर, कथना कथी न आवा तोट, कथ कथ कथी कोटि कोट कोट, देंदा दे लेंदे थक पाहे, जुगा जुगंतर खाही खाहे, हुक्मी हुक्म चलाए राह, नानक बिगसावे परवाह।

आओ उदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूरम भख सार असंख मोन लिब लाए तार कुदरत गमन गहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूर्ख अंध घोर असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गलबड़ हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख निंदक सिर करहे पार नानक नीच कहा विचार वारिया ना जावा एक बार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाम असंख थाम अगम अगम असंख लो असंख है सिर

आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। इत्थे बंदा उलझ जांदा, जिवें भगतां दी बाणी महाराज जी दे सरूप च दर्ज है। तकरीबन बाणियां दे अगे लिखिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मूल मंत्र संखेप रूप दे विच लिखिया मिलदा। ते फिर कईयां दे मन च सवाल आ जांदा है भी बाणी भगतां

महाराज जी कहते फिर ओनू योजा अनुभव हुंदा कि सब पासे सच्चा वाहिगुरु ही है, परमात्मा ही है। ऐसे उत्तम ब्रह्म नू कोई कोई बिरला बिरला पछाणदा है, किसे किसे नू दर्शन हुंदे है परमात्मा दे ऐसे स्वरूप दे।

आप ही अपने मार्ग से तोर लेंदा है। जेडे गुरमुख एक बार महाराज के दरबार च आ गए, सेवा करन लग पे, सिमरन करन लग पे, जो भी करन लग पे, गुरमुखो महाराज जी का वचन मान के कमाया करो, उस विधि विधान नू तोड़ो ना। हौली हौली हौली हौली की देखोगे कुछ समय च ही कृपा हो जाएगी। महाराज दिन बदल देंदे आ, बंदे दे दिन पासा बदल देंदे आ बिलकुल। उन्हां लई कोई औखा नहीं। जेड़ा बंदे नू ऐ लगदा ना मैं बहुत गरीब हाँ, उन्हां दा की पता एक कख दे झपक जिन्ने समय च इन्ना अमीर बना देन भी बंदा हजार जन्म लैके भी ना सोच सके उतना। महाराज दे घर किसी चीज की घाट नहीं। इनिया बेनतियां प्रवान होइयां भुल्लां दी खिमा सतगुरु साहिब जी आप सब संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रखण, चरणा कमलां दा प्यार सत्कार बख्शण, होइयां भुल्लां दी

राम नाम जप दिन सरात गुरमुख हर तन जान सब सुख हर भोगणे संत सभा मिल ज्ञान नित एहन सतप्रभ सेविया सतगुर दिया नाम कुकर कूड़ को माइया गुर निंदा पचे पचान परमे पूला दुख कणो जम मार करे खुलहान मनमुख सुख न पाइये गुरमुख सुख सुभान एथे तंद पिटाइये सच

रहे न परिये पाई, सोई काज जिन आप तजया, एक नाम किया अधारो, है भी होसी जाए न जासी, सच्चा सिरजन हारो, पंज भक्त निवाज गुजारे, पढ़े कतेब कुराना, नानक आखे गोर सदे, रहो पीना खाना, श्री राग महला पहला कर चौथा, एक स्वान दोए स्वानी नाल, पलके पहुंके सदा बयाल, कूड़ छुरा मुठा मुरदार, तानक रूप रहा करतार, मैं पत की पंद न करनी की कार, हों बिगड़े रूप रहा बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं इहा आस एहो आधार।

महाराज उन्हां वल्लों उचारण कीतियां होईआं चार लावां दे पाठ आरंभ होणगे। सब तो पहला दास लाभ दा पाठ करेगा ते जो नानक नाम शब्द आवे सुभाग जोड़ी ने मत्था टेक के उठना है। सतगुरां नूं सज्जे हथ रखदिआं होईआं परिक्रमा करनीआं हन। नाल नाल भाई साहब जी उसे शब्द का जो गायन करनगे जी।

जियो रहना संतन की मेरे मुख लागी दरमत बिनसी एक बौद्ध भागी सच कर बैस रहे गुण गाए नानक बिनस कूरा जियो माज महला पंजवा विसर नाही वड़दा हते कर कृपा भक्तन संग राते दिन सरण जो तुद त्याई इह दान मोहे करना जियो माटी अंधी सुरत समाय सब कस दिया भलिया जाई अन बनोद चुत मासे तुद भाव है सोहना जियो जिसदा दिता सब कुछ लैना छत्ती अमृत भोजन खाना से सुखाली शीतल पवना सज केल रंग करना जियो सब दीजै जित विसर नाही सम दीजै जित तुद त्याई सास तेरे गुण गावा उठना गुर चरणा जियो मज महला पंजवा सिर्फ सलाहन तेरा हुक्म रजाई सो ज्ञान ध्यान जो दुद पाई सोई जाप जो प्राप जियो भाव है भाण पूर गया न जियो अमृत नाम तेरा सोई गावे जो साहब तेरे मन पावे तू संतन का संत तुम्हारे संत साहब मान माना जियो तू संतन की करे प्रतपाला संत खेल है तुम सांग गुपाला अपने अपने संतोद हिकर प्यारे तू संदन के प्राणा जियो उन संदन के मेरा मन कुर्बान जिन तुझा ता जो तुद मन पाने तिन के संग सदा सुख पाया हर स्नानक तृप्त गाना जियो माज महला पंजवा तू जलने दे हम मीन तुम्हारे तेरा नाम बूंद हम चातरक दिखारे तुमरी आस प्यासा तुमरी ही तुम्हें संग मन लीना जियो जो बारक पी खीर अगावे जो निरतन तन देख सुख पावे त्रगवंत जल पीवित ठंडा त्यो हर रंग यो मन पीना जियो

ही मह प्रियतम सदा है बाला हूँ सदा आनंद रहे सुखदाता है गुरमु सहज समावण काया अंदर हमें मेरा जमन मन न चुके फेरा है गुरमुख हो सो हमें मारे हूँ सचो सच त्यावण काया अंदर पाप पुन गए पाही दो ही मिलके श्रेष्ठ हो पाही दो बे मार जाए एक करंगा बेन गुरमुत सहज समावण कर ही मह दूजे पाए अनेरंग चानन हो गए छोड़े हूँ मैं मेरंग प्रगट शब्द है सुखदाता ही अंदर नाम त्यावण अंतर ज्योत प्रगट पुरशो रंग गुरसाखी मिटिया अंधियारा है कमल बगास सदा सुख पाया ज्योति ज्योत मुला बणया अंदर मह रतनी भरे भंडारा है गुरमुख पाहे नाम पारा है गुरमुख बांझे सदा व्यापारी अल्लाह नाम सद पावणया आपे बात रखेंगे आपे देहे गुरमुख बांझे कहेंगे नानक जिस मर करे सो पाहे कर कृपा मन बसावणया माज महला तीजा हर आपे मेले सेवक राहे गुर के शब्द दूजा जाहे हर निर्मल सदा गुण दाता हर गुण महंगा समावण हम बारी जी ओ बारी सच सचा हिरदे बसावण सचा नाम सदा है निर्मल गुर शब्द ही मन बसावण रहा आपे गुरदाता करम बदाता सेवक सेवे गुरमुख हर जाता ई अमृत नाम सदा जन सोहे गुरमत हर रस पावण ऐस गुहा में एक थान सुहाया पूरे गुर होमे परम चुकाया ई अंदन नाम सुलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावण गुर के शब्द गुहा बचारे नाम निरंजन अंतर बसे मरारे हर गुण गावे सब सुहाहे मिल प्रीतम सुख पावण जम जगाती दूजे पाहे कर लाहे नामो पुले दूहे जाय सजाहे कड़ी महत खाले खाले बिंग रतियो मासा तोल कुड़ा बनया पैयाड़े पर चेते नाही दूजे मुठी रोवे ताही करी कुलहन रूप कुलखणी सुखने पर नहीं बावणया पैयाड़े पर मन बसाया पूरे गुरह दूर दसाया कामन पर रखिया कंठ लाहे शब्द पर रावे सेज सुहावणया आपे देवे साध बुलाहे अपना नोह मन बसाहे नानक नाम मिले बड़ियाही अंदन सदा गुण गावणया माज महला तीजा उत्तम जन्म स्थान है बासा सतगुर सेवे कर्म है उदासा हर रंग रहे ना सदा रंग राते हर रस मंत्र बतावणया हम बारी जियो बारी पढ़ मूज मन बसावणया गुरमुख पढ़े हर नाम सुलाहे अंदर सचे सो बाबा बणया राम लख प्यो हर हास माहे पाहे न केती पाया जाहे कृपा करे ता सतगुर बेटे नजर ही मेल मुला बणया दूजे पाहे पड़े नहीं बूझे त्रैपन माया कारण दूजे त्रैपन बंधा टुटे गुर शब्द ही मुक्त करावणया ए मन चंचल वासन आवे द्विधा लागे दैत सतावे बहका कीड़ा बिख मह राता बिख ही मह बजावणया हाँ करे ता आप जुनाहे बहु कर्म करे कुछ थाए न पाहे तुझते बाहर कुछ न होवे बख्शे शब्द सुहावणया उपजै पंजे हर बूझे नाही आंदा दूजे पाए फराही मनमुख जन्म गया है व्यर्थाही अंत गया पुसता बणया पैर पर दे सिंगार बनाहे मनमुख अंध जैसे कर्म कमाहे हलत न सोभा पालत न टोही व्यर्था जन्म गवा बणया हर का नाम किने विरले जाता पूरे गुरते शब्द बछाता ही अंदन भगत करे दिन राति ही सहजे

मन सचो भावे सचो सच रवे दिन राती ए मन सच रगा बणिया जो सच रते तन सचो भावे आपे देह न पिछो तावे गुर के शब्द सदा सच जाता मिल सचे सुख पा बणिया कूड़ कौशत न मैल न लागे।

लगे तित वा तित फल रतन लगे मुख भाकित हिरदय हृदय निहाल। नान करम होवै मुख मस्तक लिखिया होवै लेख आठ सठ तीर्थ गुर की चरणी पूजा सदा विशेख। हंस हेत लोभ कोप चारे नदियां अग पवहे दज्जे नानका तरिया करमी लग पौड़ी। जीव दया मर मार न पछो ताई है झूठा इहो संसार किन समझाई है। सच न तरे प्यार धंदे ताई है काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है। हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है आपे दे प्यार मन वसाई है। मोहत न चसा विलाम भरी है पाई है गुर प्रसादी बुझ सच समाई है। श्लोक महला पहला। तुम्हें तो मां बिस अक तुरा निम फल मान मुख वसे तेस जिस तू चेतना आवही। नानक कहिए किस हंडन करमा बाहरे महला पहला।

खेती वणज ना की ओट पाप पुन बीज की पोट काम क्रोध जी मह चोट नाम सार चले मन खोट।

अगन पानी बोले पढ़वाओ, जेहवा इंद्री एक सुवाओ, दुष्ट विकारी नाही पौ पाओ, आपे मारे ता आप पाए नाओ। शब्द मरै फिर मरण न होए, बिन मुए क्यों पूरा होए, परपंच व्याप रहया मन दोए, थिर नारायण करे सोए, बोहित चढ़ो जाया व्यवहार, ठाके बोहित दर गह मार, सच सलाही

छुट्टण होई है नारी तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या भरम कमाया तू काया रही है सुपनंतर तुद क्या कर्म कमाया कर चोरी मैं जाग चलिया तामन भला पाया हलत न सोभा पलत न ढोई हला जन्म गवाया हो खरी खरी दुहेली होई बाबा नानक मेरी बात न पुछा कोई रहाओ ताजी तुरकी सोए ना रूपा कपड़ केरे पारा किसी नाल न चले नानक झड़ झड़ पवे गवारा पूजा मेवा मैं सब किश पचाखिया।

लोभ की तावस्ता जब निरंजन रच समाना काहे बोले जोगी कपट कना रहाओ काया कमले हंस ए आना मेरी मेरी करत बिहानीता प्रणवत नानक नागी दाजै फिर पाछे पछताणीता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक है जेकर दृढ़ चित की जै रे जन्म जन्म के पाप कर्म के काट हारा ली जै रे मन एको साहिब भाई रे तेरे तीन गुणा संसार कम समावे लख न लखना जाई रे रहाओ सकर खंड माया तन मीठी हम तो पंड उचाई रे रात अनेरी सूजस नाही लाज टूकस मूसा भाई रे मानमुख करे तेता दुख लागै गुरमुख मिले वडाई रे जो दिन किया सोई हुआ कीर्तना मिटया जाई।

कहा गुप्त प्रकट सप्रबण बनाए आपे सुत्या दे जगाए तिस की कीमत कहने ना पाए कह क्या कथन कह सब कोई गुर शब्द मिजा बुझ गुर गुर शब्द गुर शब्द समावे बुझे हर सोई सुन सुन वेख शब्द मिलाए वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए नानक नाम रते हर नाम समाए गौड़ी गुआरी री महला तीजा मनमुख सूता माया मोह प्यार मां गुरमुख जागे गुण

पौड़ी जा प्रभ पै दयाल ना व्यापै माया कोट अगा गै नास हर एक त्याया निर्मल पै शरीर जन धूरी नाया मन तन पै संतोख पूर्ण प्रभ पाया तरे कुटुंब संग लोग कुल सबाया।

मन पाणी ऐसा जोगी वड़भागी भेटै माया के बंधन काटै सेवा पूज करो तिस मूरत की नानक तिस पग चाटै गौड़ी महला पंजवां।

ब्रह्म चितारे शीतल शांत सुख हर सरणी जलति अग्न निवारे गर्भ कुंड नरक ते राखै पव जल पारे उतारे चरण कमल आराधत मन में जम की त्रास बिदारे पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर उचा अगमे अपारे गुण गावत त्यावत सुख सागर जुए जन्म नहारे काम क्रोध।

लाख करोरे मरना होरे परे परे ही कौलु जिए सुंदर नारी अनक प्रकारी पर ग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजिए अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मैं लुजिए जा कोरे कृपा करै जीवत सोई मरै साध संग माया तरै नानक सोजन दर हर सिजी है।

जग तीर्थ किए बिच होमे बदे बेकार नरक सुर्ग दोए पहुंचना होए बहोर बहोरे अवतार सेवपुरी ब्रह्म इंद्रपुरी निःचल को थाव नाहे बिन हर सेवा सुख नहीं हो साकत आवे जाए जैसो गोर

सहज सोए। जौलो पोट उठाई चलियो तौलो डान परे, पोट डार गुरपुरा मिलिया तो नानक निरपय। गौड़ी माला महला पंजवा, पावन त्यागियो री त्यागियो, त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो। सर्ब सुख आनंद मंगल रस, मानक बिंद आग्यो राव। मान अपमान दो समाने, मस्तक डार गुर पाग्यो। संपत हरक नयावत, संपत हरक नयापत, दुखा रंग ठाकरे लाग्यो। बास बासरी एक स्वामी, उदयान दृष्टाग्यो। निरपौ पे संत भ्रम डार्यो, पूर्ण सरभाग्यो।

तन मन पाया, तन शीतल मन शीतल थिया, सतगुर शब्द समाया रहाओ। लाथी भूख त्रिशन सब लाथी, चिंता सगल बिसारी, कर मस्तक गुर पूरै धरियो, मन जीतो जग सारी। रिपते अगाए रहे रिदे अंतर, डोलन ते अब चूके, अखुट खजाना सतगुर दिया, टोट नहीं रे मोके। अचरज एक सुनोरे पाई, गुर ऐसी बूझ बुझाई, लाहे परदा ठाकर जो पेट्यो, तो बिसरी तात पराई, कहे ओ न जाई, एहो अचंबो सो जा।

कछ सोजस नाही, ए पैखर पै पैरा तवे कहां कवावण परिया, जावे कछु ना होता।

समझावै करता है जनावे रहो अनजानत किछ इने कमानो जाप तप कछु न सादा दय दिस लै यो मन दुरायो कवन करूं करबादा मन तन मन तन तन पूम का ठाकर हूं इसका एहु मेरा परम कछु जस नाही ए पेखर पह पेरा तावेहो कहाँ कमावन परया जावेहो कुछ न होता जब एक नरेंद्र निरंकार प्रभु साहब खिच आपे करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन ए रचन रचाया कहो नानक करणहार है आपे सतगुर परम चुकाया गोड़ी माला महला पंजा हर बिन अवर क्रिया पिरते जप तब संजम करम कमाने ए उरे मूछे रहो भरत नेम संजम में रहता तिनका अड़ न पाया आगे चलन और है पाई वहां काम न आया तीर्थ नय और तरणी परम था आगे ठोर न पावे वहां काम न आवे ए विद ओ लोगन ही पति आवे चतुर वेद मुख बचनी उचरा है आगे मह न पाई है बूझे नाही एक सुदाखर ओ सगरी चाक चुकाई है नानक कह तो एहो बिचारा जे कमावे सो पार ग्रामी गुर से हो अरनाम त्यावो त्यागो मनो गुमाने गौड़ी माला महला पंजवा माधो हर हर हर मुख कही है हम ते कछ न हो वै स्वामी ज्यो राखो त्यों रही है रहो क्या किच करे ते करने हारा क्या इस हाथ विचारे जित तुम लावो तित ही लगा पूरण खस हमारे।

ओंकार सतगुर प्रसाद दीन दयाल दमोदर राया जियो कोट जना कर सेवा लगाया जियो भगत चल तेरा बिरद रखाया जियो पूर्ण सौने जाए जियो जियो क्यों पेखा प्रीतम कमल सुकरणी जियो संता दासी सेवा चरणी जियो एहो जियो बताई बल बल जाई

तो दीन बंद हर शरण तहे तुम आओ गज को त्रास मिटो जय सिमरत तुम काहे बिसरावो ताज अभिमान मोह माया पुन भजन राम चेत लावो नानक कैत मुक्त पंथ ए गुरमुख होए तुम पावो गौड़ी महला नौवा को माए भोलो मन समझावे भेद प्राण साध मग सुन कर निमखला हर गुण गावे रहो दुर्लभ दे पाए मानस की बिरता जन्म सिरावे माया मोह महा संकट बन तास रुच उपजावे अंतर बहर सदा संग प्रभ त्यो नेह ना लावे नानक मुक्त तय तुम मानो जे कट रहा।

अचारा दृष्ट पै सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई ना देखो मीत किस से हो किस देव हो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर से भी गुर लागो पाए भगत करिए राचो हरणाए सिख्या दिख्या भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ गर्भ कंतक सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे समाना लिखत मिटे नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना न पंडित न चतुर सियाना न पूलो न परम पुलाना कतो न कतनी हुक्म पचाना नानक गुरमत सहज समाना गौड़ी गौरी वल्ला पहला मन कुंचर काया उद्याने गुर अंकर सहज शब्द निशाने राज द्वारे सोब सुमाने चतुराई न चीनिया जाए बिन मारे क्योंकि मर पाए रो कर मैं अमृत तस्कर ले नन्ना कार ना कोई करे राखे आप बढ़ियाई दे नील अनिल अगन एक ढाई जल निवरे गुर बूझ बजाई मन दे लिया रैस गुण गाई जैसा कर बाहर सो तैसा बैस गुफा में आखो कैसा सागर डूगर निर्भो ऐसा मुए को मारे कौन निडरे को कैसा डर कमन शब्द पछाने तीने पौन जिन कया तिन कहन बखानिया जिन बुझिया तिन सहज पछानिया देख बिचारा देख बिचार मेरा मन मानिया कीरत सूरत मुक्त एक नाई तई निरंजन रहा समाई निज कर व्याप रहा निज टाई उस्तत करे केते मन प्रीत तन मन सूचे साच सोचीत

मन बोलो सिरहावै पार, मन माने हर एक अहंकार, मन बोलो माया कर जाए, काम विरोधो रहे राज अठाए, हर पद प्राणी रसन साए, गैव रह वर कंचन सुत नारी, भो चिंता पिड़ चाले हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पै विकार, हरक शोक उभे धरवार, सुख सहजे जब जिदे मरार, नदर के तामेल मिलाए, गुण संग्रह और गुण सब जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए, बिन नामे सब दुख निवास, मान मुख मूड माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कनवरख्यास, मन चंचल तावत पुण तावे, साचे सूचे बहल न भावे, नानक गुरमुख हर गुण गावे, गौड़ी गुआरी मल्ला पहला, होमे करते रैस घोए, मान मद झूठी सच्चा सोए, सकल बकूते पावे दोए, सो कमावे तुर लिख्या होए, ऐसा जग देखे आज हारी, सब सुख मांगे ना बिसारी रहो, अदुष्ट देता कह आ जाए, बिन देखे कहना बिरता आ जाए, गुरमुख दिसे सहज सुभाए, सेवा सुरत एकली लाए, सुख मांगत दुख आगल होए, सगल विकारी हार परोए, एक बिना झूठे मुक्त होए, कर कर करता देखे सोए, तिसना अगण शब्द बुझाए, दूजा परम सहज सुभाए, गुरु